0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग छरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकदा, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकदा है कवि जी कहंदे ने किसे ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकदा वो इलाके दे विच बदनाम होवे जबर खां, पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसे ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को इक तुरंग चढ़ायो, ਇਹ ਕੁਰੀਤ ਫਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ।
1: ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

0: सिर पर शत्रु प्रबल विचारू।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित पते उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हाँ। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे हैं। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां। पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है, बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है अते आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा मिलके, बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो साध।

0: फिर हम थोड़ी चिट्ठी देख के असी डर जाइए, असी अंदर बैठे रहिए, ना असी किते जाइए, ना असी किते शिकार जाइए, बस अंदर बैठे रहिए। तुहाडा मतलब चिट्ठी दा ही वी चिट्ठी देख के श्री आनंदपुर साहब के किले च बैठे रहो, बाहर किते ना जाओ, ये किवें हो सकता है?
1: लड़बे चहो खालसा लड़ै, मारन मरन युद्ध मैं थिरै।
0: जे तुसी लड़ना चाहुंदे हो तां खालसा भी लड़ेगा, अगे केड़ा नहीं लड़े थोड़े नाल। मारना मरना साडा काम है, युद्ध दे विच आ के एक जगह टेक के पैर जमा के लड़ांगे।
1: चढ़ो जे तुम एठा न देर, देखो पुल करके पट पेर।
0: जे तुसी उधरों चढ़ के आओगे तो इत्थे केड़ा देर लगनी है, असीं तां तैयार ही बैठे हैं पहले ही। फिर देख लो भई, दोबारा सूरमे का जे जंग करवाना, पहला थोनू एक बार चंगी तरह जंग करके दिखाया, जे थोड़ा मन नहीं भरिया जंग करके तो फिर आ जाओ।
1: लिखियो गुरु तो पहुंचियो जाए, पठवायो सुन सब गिर राए।
0: जदों महाराज का लिखिया होया पहुंचया पत्र, उथे पढ़ाया सारे राजा ने सुनिया।
1: सैन सकेलन तीन सत्यारी, अब होए ठाठ टरे ने टारे।
0: सारी फौज इकट्ठी कर ली, कहने हुण तां जंग दा ठाठ बनना ही बनना, क्योंकि महाराज ने भी कह दिता कि असी तैयार हां जंग वास्ते।
1: सब राजन के बजे नगारे, जीन तुरंगन तछिन डारे।
0: सारिया राजा दे नगारे बजे, उस वक्त अपने घोड़िया ते काठिया पा के तैयार होके चले।
1: मुजरा सब सुपटन को लयो, दस हजार गिनती मैं भयो।
0: हुण सारे जिहड़े फौज सी, सारी शस्त्रां दे समेत सारिआं नूं अपने नाल लै लिया। दस हजार दे करीब जिहड़ी फौज सी, उस वक्त फौज तों पहलां सलामी लई, गिनती कीती, गिनती विच उदों फौज दस हजार नाल लई है।
1: जद आनंदपुर की दिश आए, आयुध गए पटन समंदाए।
0: श्री आनंदपुर साहब वल चढ़ के आ गए, अते बहुत सारे शस्त्र फड़ के सूरमे अगे आए।
1: तोमर तीर तुपक तरवार
0: हुण लए ने अपने नाल।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साडी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे चा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा लई, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी का फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओ सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਮਾਰ ਮੱਚੀ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ।
1: ਮਰ ਮਰ ਪਰਤੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ,
0: ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਛਾ ਮਾਰਨ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ।
1: ਜਨਮ ਲੰਘ ਭਗੈ ਕੋ ਖਾਏ,
0: ਮਾਨੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लह धरने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने
1: ठहरे राज कौन कर करने
0: इन्हां दा राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किम
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने कम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वरतें वरतारा जग जथा
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च
1: श्री मुख सुंदर ते कह तथा
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित

0: एक तो जिहड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे दे नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जिहड़े पहाड़िए ने, इह पहाड़ियां नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरसो बरसै ऐसे, सुनो सिख मम बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल भी ये सिख है।
1: मेरो सिख अन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मनदे ही नहीं गे, गुरु घर नूं नहीं मनदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, उह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब नूं नहीं मंनदा।
1: सरवर गुग्गा आदि जे पीर, दिज दिजनी सेवा होए पीर।
0: दिज ते दिजनी, दिज हुंदा ब्राह्मण, दिजनी ब्राह्मणी, भीरू हुंदा कमजोर दिला होके। जे ओ गुग्गा पीर मंनदा, सुल्तानीए पीर नूं मंनदा, होर किसे नूं मंनदा, पहलां तां उहदे लई ब्राह्मण होके इही माड़ी गल है, तुरकां नूं मन्नी जांदा एवें, ते साडे सिख जा के ओह ब्राह्मण नूं मन्नी जांदे ने अगे। महाराज कहिंदे इह तां माड़ी गल है, जिहड़े लोक बिल्कुल अपने धर्म तों भ्रिष्ट हो गए ने उहनां नूं जा के आपां ने कदे वी नहीं मनणा, ना उहनां नूं एवें झुकी जाणा, पैरीं हथ लाई जाणा। वह तो गाह अपने धर्म तो भ्रिष्ट होकर गुगे दियां कबरां ते पूजी जांदा, मत्थे टेकी जांदा, ते गाह साडे जे उहनूं जाके मत्था टेकणगे ओह भी सिखी तो खारज हन।
1: जिसकी संगत सिख न बैसे, दीनो दान का फल है से।
0: महाराज कहने मैं तो कहना उहदी संगत विच बैठो ही ना, एह जे बंदे दी ना मत्थे लगो उहदे। तुसीं कहने हो वी असीं दान देना, महाराज कहते मैं तो कहना उहदे नेड़े नहीं बहना, तुसीं कहने दान देना, एह जे नूं की दान देना, अहीं तां रोटी खवाउणी वी हुण माड़ी होई पई है। क्यों? क्योंकि वह तो किते होर दा बन गया, सारा नशा पता वह करी जांदे ने, विचे पांजे चबी जांदे ने, विचे बीड़िया सिगटा पी जांदे ने, विचे होर चीजा भी खा लिया, विचे इधर भी चलिया गया, उधर भी चलिया गया, जिथों पैसा मिलता उन्होंने अपना धर्म पैसा बना लिया। इस करके भाई जिहड़े बंदे ऐसे गंदे ने, उन्हां बंदियां दी ना संगत करो, ना उन्हां नूं कोई दान दिओ, ना कोई चीज दिओ।
1: गुर गुर सिख की निंदा करे, तिस दिज को दे सो दुख भरे।
0: हुण जिहड़ा गुरु साहब जी दी निंदा करदा है, गुरसिखां दी निंदा करदा है, वो ब्राह्मण जिहड़ा वो तां दुखी होवेगा, क्यों करदा निंदा? फिर तुसीं उहनां वरतदे हो। महाराज कहिंदे ऐसियां नाल नहीं वरतना, सिर्फ उन्हां नाल ही वरतना गुरसिखां दे नाल जो गुरु घर दे प्रेमी हन।
1: जेको मेरा होए न सिख, तिस बामण को दे न भिख।
0: हुण जिहड़ा मेरा सिख ही नहीं हैगा ते बिना ही एवें सिखी तो आके मंगण खड़ जे, महाराज कहिंदे उहनूं बिल्कुल ना दिओ कुछ भी। ऐसा रीति चली सी, हुण भी है किते किते ऐसियां रीतियां, हुण तां हौली हौली उदों एक नवी चीज प्रारंभ होण करके ना यह उदों दा अज नालों थोड़ा जिहा फर्क इस तरह है कि खंडे बाटे दा अमृत जदों छकाउणा शुरू कीता, पहलां भी बेनती कीती, कईआं ने अपनी मजबूरी भी जाहर कीती सी, महाराज हले साडे खानदान वाले नहीं मंदे।
2: कोई सिंह बन गया उहनूं तां जे हुण असीं ग्रंथी सिंह आ जां पाठी ने, होर पाठ भी कई ब्राह्मण सिंह भी हुंदे ने, उदों ऐसा नवां नवां कम चलिया तां समझा रहे ने। महाराज कहने भाई उन्होंने तो चलो कोई नहीं, जे गुरसिख बन गया दान देना उन्होंने आपने सांभ संभाल करनी, पर यह जेडे लोग ने होर गलत ढंगा सिर्फ पैसे वास्ते भेख नारण करते ने, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ।
1: ਦਿਜ ਬਿਨ ਕੇਸ ਜੋ ਪਾਹੁਲ ਤਾਰੇ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਦੂਰ ਨਿਵਾਰੇ।
2: ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੱਗੀਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤਰ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਖੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਰਹਿਤਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਓ।
1: ਸੁੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰਹਿਤ ਕੋ ਰੱਖਣ, ਧਾਰੈ ਧਰਮ ਸ਼ਰੁਤ ਕਰੈ ਜੋ ਭਾਖਣ।
2: ਸੁੱਚ ਰੱਖੇ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੇ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਕਰਨਾ।
1: ਹੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਨ ਬੇਖ ਧਰ ਦਾਨ ਲੁੱਟ ਬੇਤ।
2: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਲੋਕ ਲਿਬਾਸ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀ ਦੇ ਤੀ, ਪਟਕੀ ਜੀ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਓਰਿਜਨਲ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਜੇ ਦੇ ਤਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭੇਖੀਆ, ਉਹ ਪਖੰਡੀਆ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਖਾਨਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ।

0: भारी दीवान सजिया
1: हेमलत का धारण करे आगे चूबदार तै खरे
0: हेमलस्ट का जड़ी सोने की लाठी हुंदी है पकड़ के चोबा चांदी दियां भी सोने दियां भी चोबा लैके सेवादार अगे खड़े हैं
1: श्री मुख ते तब हुक्म बखाना गुनी कवीशर पंडित नाना
0: उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया इस तरीके दे नाल कि जेड़े अपने भाई गुणवान बंदे ने कवीशर ने नाना प्रकार दे जेड़े पंडित लोग ने विद्वानी करते ने कथा करन वाले ने अज इन सारिया बुला के लियाओ इन्हों को अज कुछ प्रश्न पूछने ने
1: सब अन्न को हकार लियाओ जय जय देता सिदाओ
0: इन्हों सारिया लैके आओ जिथे जिथे भी डेरे ने इन्हों के टिकाने घर बार श्री आनंदपुर साहब के हरेक नूं बुला के लियाओ अज
1: सुन कै सब तत्काल बुलाए
0: सुन के उस वक्त ही सेवादार चले गए थावां थावां ते सारिआं नूं बुला लिआंदा
1: तिनको देह नाम बताए
0: कवि जी कहिंदे कुशक दे नाम जिहड़े मैनूं पता है उन्ने क मैं दस रहा हां
1: केशो दास पुत्र कुवरेश
0: सो ये केशो दास दा पुत्र कुवरेश आया है
1: द्रोण पर्व जिलकीन अशेच
0: सो जिने महाभारत दे विच्चों द्रोण पर्व सारा जिहड़ा पर्व है वो भाषा दे विच टीका कीता है
1: गुणिया सुखिया बल्लभ आयो
0: भाई गुणिया भाई सुखिया भाई बल्लभ ये भी तिने आए हैं
1: ध्यान सिंह दूरदर्शन पायो
0: भाई ध्यान सिंह जी भी चल के आए ने इन्होंने भी गुरां दे दर्शन पाए
1: इत्यादक पहुंचे कुछ और बंदत भे सोडी सिर मोर
0: इत्यादक कुछ होर भी आए ने मुखिया दे नाम लै ले ने जां जिन्ने क पता लगे सोडियां दे श्रोमणी सतगुरु महाराज जी नूं इन्हां ने आके मत्था टेकिया
1: सादर बैठे सभा मझारे
0: सहत आदर दे आके सभा दे विच बैठे हन
1: सप्रत श्री प्रभ गिरा उचारे
0: जिन्ने जने आके बैठे सन सियाने विद्वान पंडित गुणी जन उन्हां प्रति गुरां ने इस तरह वचन किया है।

0: तिज दिखाए गुल संग मिलायो।
1: सोने का हुक्का बनवाया शाही हुक्का, आते उदे विच ब्राह्मण दिखा के गुड़ मिला दिता। सो जिन्हों के तंबाकू पहले ही मिलाया होया सी, कहिंदे बस इहदे च आपां कुछ नहीं पाउंदे, आ थोड़ा जा गुड़ पाया है।
0: अपर बिपर के हाथ गहाए, तिसके आगे धरयो बनाए।
1: एक नकली जिहा ब्राह्मण खरीद लिया पैसों च, कहिंदे तू ऐ करी तैनू असीं फड़ावांगे हुक्का पहला, तू फड़ के फिर इहनू फड़ाई तपस्वी नूं, ये भरोसा करेगा कि हां जे ये भी तो मेरा ब्राह्मण भाई है, तो इस करके जब इनू कुछ नहीं होया तो मैनू की हो सकता है।
0: रिखी पिख कै सब संग उचारा, मैं न करो ये अंगीकारा।
1: उस वक्त वह ऋषि उन्हू कहते हैं जो रिखीक होंदिया इंद्रिया, जिहड़ा अपनिया दसों इंद्रिया काबू कर ले उन्हों का ऋषि है। इस करके महापुरुष जां कह लो तपस्वी कह लो रिखी कह लो, इन्हें एक बार तो साफ जवाब देता सारिआं नूं कि मैं नहीं यह पींदा, मैं अंगीकार नहीं करना माड़ी चीज नूं।
0: भलो के बुरो नहीं सुध कोए, नहीं स्पर्शो दोष जे होए।
1: कहने चाहे ये चीज भली है चाहे बुरी है, चाहे दोष है जां कोई नहीं दोष है, मैं इनू अंगीकार नहीं करता।
0: सुन कर जे मलेच बुद्धवंते, हित निर्दोख करने उचरंते।
1: सुन के जेड़े उत्थे मलेश सी बुद्धवंते, बुद्धि तो किसी की हो सकती है, रावण बड़ा चलाक सी, हरनाक्ष भी बड़ा चलाक सी। बुद्धि वाला मलेश अते बुद्धि वाला निर्मल दो प्रकार के बंदे ने, एक विवेक बुद्धि वाले गुरमुख होंदे ने, ये बड़ी बुद्धि वाले चलाक बंदे, चलाक किस्म के बंदे जेड़े ने, ये चलाक बंदिया ने इस निर्दोष करने वास्ते इस तरह कहा।
0: सकल सभा को क्यों ना निहारे, मिल पीबत है स्वादत सारे।
1: कहने वह साडा दिमाग खराब है, आज सारे जाने पी रहे ने, सारी सभा पी रही है, एडे एडे साडे राजा साहब वजीर साहब छोटे वजीर साहब वो इन्ने इन्ने वड्डे बंदे इनू चीज नू पींदे आ, असी माड़े देखदे तैनू, असी भी तां इह कम करदे ही आ, ते जे तू इह कम कर लेगा फिर तैनू राजपुत्री नाल तेरी शादी होई आ, राजे दा जवाई है तू, इह कोई माड़ी चीज नहीं है, इह तां बहुत अच्छी चीज है, इह तां बड़ी स्वाद चीज है, इस करके तैनू पी लैनी चाहीदी है।
0: मैं दोष काव लोका कंचन पावन को बनो का,
1: ये कादा दोष है भाई, ये देख सोने का बनाया हुआ हुक्का किड्डा वधिया हुक्का है, सोना तो वैसे पवित्र मनिया हुआ, आ फिर गुड़ पाया विच पानी पाया, होर से की पाया दे च, वो तंबाकू बारे नहीं दस रहे कि तंबाकू भी पाया है।
0: गुड़ सन मिलियो बिपर ले आयो, इत्यादक कह कह बिरमायो।
1: इस तरह सारे जाने जो कहन लग जान फिर बंदे नूं मनना ही पैंदा, कोई बहुत पक्का होवे जाल ठगा ने कह कह के कहने ए किधर चलिया भाई कुत्ता लैके, कहने नहीं ये लेला है, दूजे ने भी यही कहा ठग ने फरलांग ते वह खड़ा, कहने अज किधर लैके चलिया ये कुत्ता, कहने नहीं लेला है, तीसरा ठग भी कहना चौथा कहना की गल कुत्ता चक्या होया, वो बंदा कहना मेरा ही दिमाग तो नहीं कितने खराब, चार जने ने कहता तू कुत्ता चुके मैं लेला समझदा, उन्हें सुट दिता वह, और चार ठगा ने चुके बना लिया खा लिया। इस तरह ये जेड़े लोग बहु गिणती अज भी ने 90% लोग ये खराब ने, 10% जेड़े धार्मिक व्यक्ति ने, लोग कहते वो असी पागल हैं जेड़े असी इन्ना कुछ करते हैं, वो इस करके क्योंकि हम 90 बंदे गलत ने इस वक्त दुनिया च, वो 90 बंदियां दी गिनती इन्नी भारू हो जाती दूजे बंदियां ते, कई बारी धार्मिक व्यक्ति टबला खा जांदा कि ते मैं ही तो नहीं पागल जां मैं तो गलती ना होवां, क्योंकि सारे बंदे ये चीजां खाई जांदे माड़ियां चीजां, इस करके ये बंदे नूं भी इन्हां ने ऐसे चक्कर च पाया। इत्थे तां 99.99% ही बंदे सारे खराब बैठे सी सिखाए हुए सी, इस करके वो सारिआं ने इहनूं प्रभावित कर लिया।

0: सच तक ही मैं जपदा सारा कहने क्योंकि सार मंत्र उत्तर तो है ना मंगल या मूल मंत्र जरा मैं पौड़ी रला के पढ़ना सच जुगा सच हैपी सच नानक होसी भी सच ए सारे नालों श्रोमणी बन जाता फिर
1: गुर तर कै अवतार को तीनो जगत उधार
0: सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने जगत का उधार किया धारण करके अवतार संसार दे उत्ते इन्ना बड़ा दे दिता इन्ना बड़ा मंत्र दे दिता एदे नालों श्रोमणी होर कोई मंत्र नहीं है तिना लोकां दे विच एक गल याद रखियो जद दी गुरबाणी गुरु नानक देव जी ने प्रगट की है जद दा वाहिगुरु मंत्र प्रगट किया मूल मंत्र उदों दा देवते भी यही ही पढ़ते ने वाहिगुरु भी पढ़ते ने मूल मंत्र भी यही पढ़ते ने ते कीर्तन भी सुनते ने कथा भी सुनते हो कहने असी नहीं अपना कल्याण करा भी कल्याण हित संगत विच आके बैठते हैं गुप्त रूप दे विच
1: सतगुर चलत दिखाया दे धार कै मीत
0: मित्रों सुनो ये सतगुरु ने एक कौतक अकाल पुरख ने दिखाया देही धारनी उन्हां लई कोई औखी गल नहीं हुंदी जद मर्जी प्रगट होना गुप्त होना है गुरां दे हत्थ विच ही है इस करके गुरु नानक देव रूप होके ए तो एक कौतक दिखाया अपां नूं
1: सब देखा सतगुर चलत सिमरै निसचीत
0: सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने तो एक कौतक देखिया सारे चित दे विच याद करदे हन गुरां नूं
1: एक बार सतगुर कहो मंत्र जंत्र कल माए
0: एक बार सतगुरु महाराज ने कहा सी बचन कि कलयुग दे विच जेड़े मंत्र जंत्र कादक हन
1: लोग करेंगे जगत में मेरा सिख न चाहे
0: लोग मंत्र बड़े पढ़नगे करनगे जंत्र तंत्र मंत्र धागे तवीत पर एक गल कहंदे सानू सतगुरां ने आप कहा दसवें पातशाह ने सारी संगत नूं बैठिया बाबा जी कहंदे मैं कोल बैठा सी बाबा गुरबख्श सिंह जी राम कुवैर जी कहने महाराज ने कहा सी सारे लोग मंत्र जंत्र करनगे पर मेरा सिख ना करो दुनिया जिन्ना मंत्र जंत्र मर्जी करे मूल मंत्र का पाठ ही करना जिवें कलकत्ते जो महापुरुष बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा 1967 दे विच गए सी जां 68 दा सन होना वो एक सिंह साडे सीगा जिहड़ा महापुरशां नाल वो मूल मंत्र का 24 घंटे का अभ्यासी सी जे माड़ी जी नींद आ जानी तो उन्हें सौ जाना तो दत्त ना लैण वास्ते बाहर जांदे ने सिंघां वास्ते बार बार एक साधु रहिंदा सी झोंपड़ी दे विच ते ओ झोंपड़ी च रहिंदा तां ओ लोकां नूं कहिंदा धागा फड़ी जरा वट देना मैं ओ धागा फड़ा दिंदा हुंदा सी ते वट दे जांदा ते इधर मंत्र फड़ी जांदा सी ओ धागा तांबे दी तार बन के उल्ट के ओ बंदे नूं लगदा उहदा गल वढ दिंदा हुंदा सी ओ बड़ा भैड़ा सी साधु ओह जदों सिंघ नूं कहिंदा फड़ियो जरा मैं धागे नूं ना वट देना इधरों फड़ लियो मैं इधरों वट दिंदा वह पढ़ी गया साधु आपका मंत्र सिंह मूल मंत्र का अभ्यासी सी वह मूल मंत्र पढ़ी गया वह उल्ट के तार जी साध ही बजी उस साध की चढ़ाई कर गया सिंह ने आके महापुरशां दस्या महापुरश कहते जे तू मूल मंत्र ना पढ़ता हुंदा ए तू फिर अज नहीं सी होना कहते वह मूल मंत्र पढ़न करके उहदा मंत्र उल्ट पै गया उहनूं इस करके भाई मूल मंत्र तां 24 घंटे उठते बैठते हर वक्त वाहेगुरु मूल मंत्र का अभ्यास तक करते ही रहो
1: एक समय मंत्री बहुत कर कर बाजे बाज
0: दसवें पातशाह कहने सिंगो एक बार तो घर घर के मंत्रां दे बाजे बजणगे हरेक घर च मंत्र जंत्र तंत्र टूने तवीत एक बार तो काला जादू पूरी दुनिया ते छाऊगा
1: जब तप ने चा नारा करे देखत साज
0: ना किसी दे अंदर निश्चा रहूगा ना जाप करूगा ना कोई तप करूगा लोग बस इधरों धागा कराया उत्थे बंदता किसी की दुकान च सिड़ता उहदी दुकान बंद हो जाए साडे ऐ हो जाए फलाना मर जाए फलाने लत टुट जाए लोग तो एडे पुठे हो जाएंगे ना पुठे काम करया करनगे
1: जैसी गुर की भावना तैसी गत होए शक्त
0: जैसी गुरु की भावना तैसी शक्ति हुण जिवें महाराज ने वचन कर दिता इस करके जिवें अथवा सिख की भावना होवेगी गुरां ते उस प्रकार की शक्ति मिलेगी जां जिवें गुरां ने वचन कर दिता हुण जिहड़ा यह टलना तो है नहीं कहते उस तरह ही कलयुग के अंदर जीव एक बेर तो करनगे ही करनगे
1: शरण भजो श्री राम के कल मैं नेचा मुक्त
0: कलयुग के एको गल याद रखियो कि निश्चय वाला ता पार होवेगा एक वाहेगुरु की शरण ग्रहण करो, बस होर कोई कम ना करो, गुरसिखो ध्यान रखियो, वाहेगुरु की शरण ग्रहण करो।
1: वाहेगुरु ए मंत्र जप सगल सरेंगे काम।
0: अरे सारे जने जपो सतनाम श्री
1: वाहेगुरु साहिब जीओ,
0: सतनाम श्री
1: वाहेगुरु साहिब जीओ,
0: नाम श्री
1: वाहेगुरु साहिब जीओ। सिख गुरु के हित करो नित सवार आराम।
0: इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने सवेर ते रात, सवेर ते सवेर सारे वक्त, सवार तो पाव सवेर, आराम तो पाव अगम, अगम दा वेला जिहड़ा अमृत वेला है, हर वक्त अमृत वेले सवेरे शाम रात दिन एक रस वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जपी जाया करो।
1: घोड़ा अटके चलते बड़े युद्ध एक बेर।
0: उस करके कहने बहुत वड्डा युद्ध चलदा सी, घोड़ा अटक गया रस्ते दे विच, घोड़ा अटकन करके सारा जिहड़ा कर्म सी ओह खराब हो गया, क्योंकि घोड़ा खड़ा हो गया, जंग दे विच गए हुए सीगे। इस करके कल नूं श्रवण करांगे, एक तां स्पीकर ठीक नहीं है, एक समा पौने से पूरा हो चुकिया है, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪੀਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤਾਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जिहड़े मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग

सतगुरु कहिंदे कर हर ट माला टिंड परो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां अकादरता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे टिंड माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन अकादरता बख्शे इस माल नूं तू आए नूं खिचे कौन कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता इस पीतर बलदा दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दिया माला टिंडा खिंचन लई मन बलद बनाओ ते मन तो साडा सिमरन करदिया भी दौड़दा रहिंदा है साहब कहिंदे ने तू मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडा नूं खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया मट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया महाराज शरीर ते केड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम खेतां विच क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे केड़े कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बगन लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा है फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जी गल कर लगता वा ते कहते फलाना बंदा वजन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपण वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपण वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नूं जो इस सवासा की माला बना मगर यह जे बरतना होया जे मन नूं तू ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्लेओ अमृत आउणा नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

हर जसरे मन गायल जो संगी है तेरो अवसर भी तेरो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज सिंह पद नी लगायो काल फास जब कल करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे काज गगारियो पाप करत सुख ज्यो नहीं ने गर्भ नवारियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई जे विद गुर उपदेसे ध्यान दियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक

तरला पाओ तरला, जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है, धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है? उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: कबीर कोई नहीं तेरा, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, इथे कोई तेरा नहीं। आखा फिर की करा, कहिंदे हिरदे राम की ना जपे सवेरा, अमृत वेले उठिया कर, परमेश्वर की बंदगी करिया कर। एक वचन होर बड़ा सुंदर गुरु रामदास महाराज पातशाह की कृपा नाल बाबा कबीर जी ने कहा है, रे मन तेरो कोई नहीं, बोलो रे मन इथे तेरा कोई नहीं हो, खिंच ले जिन भार, गड्डे दे अगे पशु जूता हुंदा वा ते गड्डा खिंच रहा हुंदा है। इस तरह ही एक परिवार का मुखी कहिंदा वा, जे मैं हुण पाप ना करा ते इन्हां नूं रोटी कितरा खवाऊं। खिंच ले जिन जिन्हां दा भार खिंची फिरदा है, जिन्हां लई पाप करदा है, ए ते बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार, ए ते संसार ए तरह दा, धीआं पुत तेरे घर च ए तरह रह रहे ने, जे को आलणे विच पंछी बच्चे देंदा है ते लिया लिया के बेचारा कित्थों दाणे चुकदा, अपने मुंह च नहीं पाउंदा। ध्यान दिओ पंछी वाल कदी वेख्यो, जिथों जिथों दाणे चुकदा वा ना, अपने अंदर नहीं लगाउंदा, मुंह दे विच पा पा के दाणे कित्थों कित्थों चुक के लिया के ते बच्चियां दे मुंह विच पाउंदा है। मगर बच्चे जिदन वड्डे हुंदे ने आपो अपने राह नूं उड जांदे, ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੁੜਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੜਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟੀਆਂ ਵਾਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਈ ਬਾਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਦਣ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆਂ ਦਾੜੀ।